लो को लेने बरबरी सासे तकालीस किमी सासे तकालीस बरबरी आइए सब सन को थिल बा जीत गुल टिकट है टिकट नोट के नगो ले जीत को थिली को टिकट नोट के मीते नंबर 8 टिकट नोट के मीते नंबर 3 नोट के नगा के सिर गिचो गोले कुकू टिकट नोट के नगा के सिर गिचो गोले कुकू इमेजिन को के नगी चोट के जबो 30,000 Eni nguni gelechin congratulation ninyende no tagene ga itil tigetem Yani gelechin ne nicho ne koge ni kibata 30,000 ninyende ne koge lechin congratulation Utambia nini watu Ile njini ne bingi itil tigetene nguni agelengo

राइट अगो गिरी की चुकी नहीं होगी तो कोस्टन ने निंगाम का आगे गागे जीनो तो नहीं मिचने वाला काम में से भी तिल्ती की तीनों अविक्सी नहीं होता जो मराम जो स्वीने अम्मा जाने का सीट को लेने रहन अम्मा जी का सीट को लेने वाला बिसाम इनके ले एन न्यू की तो कोस्टन ने चीता के तू नोट नहीं मिचने वाले कहाँ पर चीज़ में कब से जगह तू नोट नो बद्री थाउजेंड लेकिन इनको ले जो नहीं कहाँ की तीसी जेब कौन है जी की गोई तो दादी थाउजेंड कैसे नहीं न्यू की तू कोस्टन ने इमेजिन के इतू का किन्हु के ले जीने ने आगे कौन है दादी थाउजेंड जब कुकु यान अगर जब मौजा मानो ले इन प्रोजेक्ट अगर ये ना ने प्रोजेक्ट नो नीचो क्या और लेंजिंग कैसे नहीं निरो के कौन है दादी थाउजेंड कुबागो मनुजे अगर ये निगु निगे इतू लिंबान्यों बहानी अगर निगु चितिन आगे गेन वगिंडा अगर टाइम Nitong the Star 274 Asia. Calling in a negative ghost in any Amaji Chilgitin Star 274 Asia.